रिलीज हुई सी 1987 28 सितंबर 1987 नू सुनील गवास्कर जिहड़ा क्रिकेटर उन्हें रिलीज की थी सी। ते 1991 च जरा सिली सिली जिहड़ी गीत सीगा इहदा नैशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर नू मिलिया सी लता मंगेशकर नू। लिरिक जिहड़े गुलजार ने लिखे सी 1991 च उन्हां नू वी इस फिल्म च अवार्ड मिलिया सी। म्यूजिक डायरैक्टर लता दा ब्रदर जिहड़ा हरिनाथ मंगेशकर उन्हें 1991 च म्यूजिक डायरैक्टर का भी अवार्ड विन किया। सो लता मंगेशकर ते इन्हां दे भरा द्वारा यह फिल्म प्रोड्यूस की सी। सिनेमाग्राफी दी साडा मनमोहन सिंह जी ने सिनेमाग्राफी की सी और फिल्म के कलाकार फिर दस दिए विनोद खन्ना डिंपल कपाड़िया अमजद खान लोकनाथ हेमा मालिनी और गीत ये बहुत ही प्यारे गीत ज़्यादा गीत लता मंगेशकर ने गाए सी। सुरेश वाडकर ने भी गीत गाया आशा भोंसले ने ते इन्हां दे भरा हिरदयनाथ मंगेशकर उन्हें भी गीत गाया सी जा जा रे। तो चलो एक गीत नूं सुनदे हां जरा सिली सिली गुलजार दा लिखे हुआ गीत जिन्हों बाद च हंसराज हंस ते कई कलाकारां ने गाउण दी कोशिश की पर जो लता गा गई ओहदा भी कोई जवाब नहीं ओह गीत।

ऐसी धुन फिल्म सी सत्यम शिवम सुंदरम 1978 च फिल्म बनी सी। सत्यम शिवम सुंदरम मतलब के सच परमात्मा ते खूबसूरती। फिल्म बनी सी 78 च, तो राज कपूर ने फिल्म बनाई सी, डायरेक्ट भी प्रोड्यूस भी राज कपूर ने कीती सी, ते इस च काम कीता सी शशि कपूर, जीनत मान ते पद्मनी कोल्हापुरी ने। फिल्म दे विच गीत जड़े सी ज़्यादा लता मंगेशकर ने, नितिन मुकेश, मुकेश भुपिंदर सिंह ते मन्ना डे ने गाए सी। ये जड़ा जशोमती मैया से बोले नंद लाला, पंडित नरेंद्र शर्मा ने भजन लिखिया सी, उनू लता मंगेशकर ते दो दफा फिल्म च ये गीत आ, एक च लता मंगेशकर ते मन्ना डे, दूसरी च लता मंगेशकर ने गाया। और फिल्म नू बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल नू अवार्ड मिलिया सी। राधु कामुकर नू बेस्ट सिनेमोग्राफर का अवार्ड मिलिया सी। तो इस फिल्म दे विच एक गीत सी जिहड़ा कि मुकेश ने गाया सी, मुकेश चंचल शीतल निर्मल कोमल, ये गीत मुकेश ने गाया सी। तो मुकेश का जो शायद आखिरी गीत सी जिंदगी का, इस तों बाद च उन्हां दी डैथ हो गई सी। इस फिल्म के जिहड़े गाने सी बिनाका गीतमाला जिहड़ी, उहदे च 1977 दी जिहड़ी लिस्ट सीगी उहदे च सत्यम शिवम सुंदरम गाना जिहड़ा 6वें नंबर ते सी, यशोमती मैया से 7वें नंबर ते, जिहड़ा चंचल शीतल निर्मल कोमल 24वें नंबर ते, 78 दे विच बिनाका गीतमाला दे विच ये गीत लिस्ट दे विच टॉप गीतां दे विचों एक गीत सीगा। और इहदे विच दिल नू और ब्यूटी नू प्यार करन नू बहुत वधिया तरीके नाल राज कपूर ने दर्शाया। राज कपूर जिहड़ा कि बहुत वधिया फिल्मां बना गया, वधिया फिल्मां कदी कदी बनाउंदा सी, ते उहनां फिल्मां दे विच एक सी सत्यम शिवम सुंदरम, ते उहदा गीत सुणदे हां।

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया है।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो घूरती रहती हो मुझे, तुम्हें तो जादू डाला है मुझ पे।